0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेज़बान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: सामेन और नाजरीन, रेडियो हमतन कोपेनहेगन और टी वी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहाँ भी यहाँ से सफर में हैं, मैं हूँ आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के सामने हम अपने मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे और मौजूद जो हैं हसब मामूल सियासी, समाजी और मालूमती निर्देश होंगे। और इन सब मौजूद पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी अहम मालूमती खबरें हम आप तक पहुँचा देते हैं। कल रजा ने मुझे काफ़ी लेट जो है दो खबरें दी, जिसका बहुत ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, उनको नाजरा ने यह कहा कि वो अपने सफ़र के लिए नई वैक्सीन कार्ड बनवाएं। अब ये वैक्सीन कार्ड पता नहीं है, ये सऊदी अरेबिया ने डिमांड किया है, ये पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है। लेकिन 14 सितंबर जो है वो हज और उमरा के लिए जो बैन अक्वामी सतह पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं पाकिस्तानी, उनके लिए लाजमी करार दिया गया। अब प्रॉब्लम यह कि आज 13 तारीख है और एक जो दिन है, अब पता नहीं वो कितनी देर लगती है वो वैक्सीन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हज या उमरा के लिए जाना चाहते हैं, वो जो है ये वैक्सीन कार्ड बनवाएं, क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो फिर आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए जो ये डिजिटल वैक्सीन कार्ड है, ये ज़रूर बनवा लें। और इसमें वैक्सीनेशन जो है वो उसमें पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार, दर्द बुखार और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन शामिल है। तो ये खबर हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। दूसरी खबर जो है वो एक और अहम खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जो समुंदर पार हो पाकिस्तानियों के, वो भी नागरा ने ये जो है कहा है कि वो सफ़र करने से पहले अपने पास दुरुस्त सफरी दस्तावेज रखें और तमाम काबिल इत्तलाक इमिग्रेशन की ज़रूरियात को पूरा करें। और उसमें शनाख्ती कार्ड जो है जिनके पास है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है या ओवरसी पाकिस्तानी जो नेशनल कार्ड है NICOP या पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जहाँ जिसका इत्तलाक होता है, वो उनके पास होना चाहिए। और हुकूमत ने यह भी वादा किया कि बैरून मुल्क काम करने वाली पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान वापस तो आ सकते हैं, चाहे उनकी शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई हो, लेकिन बशर्ते उनके पास काबिल इत्तलाक ज़वाबत के मुताबिक दीगर मतलूबा सफरी दस्तियाब हों। एक तो पासपोर्ट हो जो 6 महीने से कम वैलिड ना हो, और अपनी टिकट लेने से पहले आप एयर कंपनी से भी पता कर लें कि पाकिस्तान जाने के लिए उन लोगों को जिनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है या जो डबल नेशनलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। रजा भाई के डबल नेशनलिटी जिन लोगों ने ली हुई है, उनको अब वो ऐसे मुँह उठा के नहीं चल पड़ेंगे। उसके लिए जो है ना काफ़ी हुकूमत ने, अब पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं। मैंने भी जाना पाकिस्तान 4 महीने के बाद, तो मैं खुद आप वो ये कहते हैं कि आप वहाँ से इन्विटेशन मंगवाएं पाकिस्तान से, जो आप फैमिली की तरफ से हो और उसके ऊपर दस्तखत नहीं है, उसके ऊपर जो आपको बुला रहा है उसका अंगूठा होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी को चाहिए तो वो पाकिस्तान एम्बेसी को यहाँ पे फ़ोन करें, या जहाँ जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको पता करके ये सारी मालूमात। लेकिन टिकट ख़रीदने से पहले वीज़ा लगवा लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तो जाते हैं पाकिस्तान कभी?
3: मुझे अब तो काफ़ी अच्छा हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा ये आपने जो फरमाया कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्पलॉय रहते थे जिनके पास फैमिली की पासपोर्ट था, इनको स्पॉन्सर लेटर की पाकिस्तान से जरूरत नहीं होती
2: है। जैसे जी जी बिल्कुल,
3: तो ये समझ आई आपको?
2: मुझे बिल्कुल समझ। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान से बाहर मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में रहते हैं वो PTI के मेंबर हैं, और PTI से उनका रابطہ है और उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कंट्रोल करना चाहती हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो चीज़ को समझते हैं कि जो लोग पाकिस्तान आए वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। चलिए, और समर तो चला गया, अब जो है हम विंटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि 1874 से लेके जब डेनमार्क ने मौसम के बारे में अपना रिकॉर्ड जमा करना शुरू किया, तो ये आठवीं गर्म तरीन जो है ये समर गुजरा है। तो आपको जैसे पता है कि पूरे यूरोप में भी बड़े प्रॉब्लम हुए हैं, आग वगैरह काफ़ी लग गए हैं कई जगहों पे, लेकिन अब मौसम जो है चेंज हो रहा है। तो हम अपने सामान्य नागरिकों को कहेंगे कि अब जब बाहर जाएं, खास धूप निकली हो तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें। जब आप वॉकिंग के लिए जाएँ या फॉरेस्ट के लिए जाएँ या शॉपिंग के लिए जाएँ तो मौसम अब जो है वो सर्दी की तरफ ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। तो क्लोथिंग वगैरह जो अब 1 अक्टूबर से जो लोग जो पेंशनिस्ट हैं या लोग जो जिनकी उम्र सीधे 65 से ऊपर है उनको इन्फ्लुएंजा और कोविड का जो वैक्सीन है उसकी भी ऑफर हुकूमत दे दी है। उसका भी आप अगर आपको कोई ईमेल वगैरह आए तो आप उसके ऊपर जो है कर सकते हैं। रजा भाई, ये आज तो 13 सितंबर है, लेकिन दो दिन पहले जुमे के रोज़ 11 सितंबर को एक तो वो जो न्यूयॉर्क में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके ऊपर सारी दुनिया बात कर रही है, हम भी बात करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरे जो मुझे जो बड़ा जिस चीज़ का हमेशा दुख होता है वो 11 सितंबर को वो कायद आज़म की वफात का दिन है। वो एक पाकिस्तान बनते ही एक साल के बाद वो 71 साल की उम्र में कराची में उनकी फौजी हुई, और हमारा वतन जो है वो एक यतीम हो गया। और वो जिस चीज़ को कायदे आज़म पाकिस्तान के लिए चाहते थे जो वो फिर बाद में वो नहीं हो सका, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया है आखिर वक्त तक वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने मेहनत की और एफर्ट की। और एक दफ़ा उनसे ये पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ज़िंदगी की क्या है, क्या ये पाकिस्तान बनाना है? तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जब मैं मरने के बाद अल्लाह मियाँ के सामने हाज़िर हूँ तो अल्लाह मियाँ मुझे कहें वेल डन मिस्टर जिना, यू डिड योर बेस्ट। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप एफर्ट करते हैं, इतना बड़ा आपने मुल्क बना दिया, इतने बड़े सांसददान थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना जो कुछ किया है वो लोगों की बेहतरी के लिए किया है। तो ये दो खबरें तो थी 11 सितंबर के तवस्सुल से। और एक और ख़बर मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस साल दो हफ्ते पहले पूरे डेनमार्क में यंग लोगों के लिए हुकूमत ने जितने म्यूज़ियम वगैरह हैं या कॉन्सर्ट वगैरह हैं उसको यंग लोग जो है वो फ्री जाके देख सकते थे। तो ये अच्छी बात है कि कल्चर की फरवानी है यहाँ पे, कल्चर के बारे में जितने भी चीज़ें होती हैं उसके यंग लोगों के लिए जो है वो उनको तरफीब दी जाती है कि वो आएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। हेल्थ के तौर से एक मैं खबर देना चाहता हूँ कि एक नई रिपोर्ट आई है, डेनमार्क हालांकि बहुत अमीर मुल्क है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी डेनमार्क में खुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशी होती है। तो भी हुकूमत की नई रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कुछ इनिशिएटिव, कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं ताकि वो लोग जो खुदकशी की तरफ मायल हैं वो टेलीफोन करके राय ले सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, और ये खुदकशी को रोकने के लिए हुकूमत की ये सारी तजावीज़ थी। तो ये चंद खबरें थी। अब हम चलते हैं जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर साहब आप हैं मौजूद टेलीफोन पर?
4: जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। अच्छा इंटरनेशनल खबरें शुरू करें या डेनिश खबरें शुरू करें, क्या मूड है
4: आपका? मजाक है।
2: चलिए ठीक है, तो जी जी मैं चंद एक इंटरनेशनल खबरें शुरू करता हूँ। वो अभी जर्मनी में जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी, एक बहुत नस्ल परस्त रेसिस्ट पार्टी जो है उसको बड़ी कामयाबी हुई है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी AFD कहते हैं उसको, उसके ऊपर जनाब सदर ट्रंप साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उसने कहा मैं बड़ा खुश हूँ कि जर्मनी में ऐसी पार्टियाँ जो हैं वो अब जीत रही हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि जर्मनी जो है यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें उस पार्टी के ज़्यादा इतनी मकबूलियत है, उसके अलावा वहाँ पे नेशनल लेवल पे भी वो पार्टी जो है बहुत ही तरक्की कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
4: इसके बारे में तो अगर आप तो उसको गहराई से देखें तो सदर ट्रंप साहब ने जो इस पार्टी की कामयाबी को सराहा है
2: जी,
4: और बल्कि सराहा ही नहीं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इसके मंशूर की पैरवी करेंगे। तो इसका मंशूर तो इतना ज़बरदस्त और इतना ख़राब है कि खुद जर्मनी में कल मुख्तलिफ जगहों पर 12 बड़े बड़े शहरों में इस पार्टी के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, और सिर्फ मुजाहरे ही नहीं हुए, उन्होंने कहा है कि इसकी पेशबंदी को रोकने के लिए अब वक्त आ गया है कि जर्मन आवाज़ इस तरह उठाई जाए जैसे नाजियों के खिलाफ आवाज़ें उठी थी। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान और जर्मनी की मौजूदा सियासी सूरत हाल के दौरान जो कुछ हो रहा है इनको सामने रखा जाए तो सदर ट्रंप के जो बयान हैं वो उन नज़रियात की तायद करते हैं जो कमोबेश नए नाजियों के नज़रियात हैं, और नए नाजियों के नज़रियात से तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा वाकफ हैं कि वो क्या हैं और वो ख़ास तौर पर गैरमुल्की के मुताबिक क्या नज़रिया रखते हैं। जहाँ ये सूरत हाल हो तो अच्छा, और फिर जो सबसे बात एक और है कि ये पार्टी जो जर्मनी में कामयाब हुई है ये जर्मनी के उस हिस्से में ज़्यादा कामयाब हुई है ये किसी ज़माने में DDR कहलाता था, यानी इस तरह की जर्मनी
2: इस
4: जर्मनी का, और वहाँ के जो रहनुमा हैं इस पार्टी से उन्होंने खुल कर कहा है कि उन्होंने अपनी इस कामयाबी के लिए जो तारीख शुरू की थी उसका जो बुनियादी अनासर है उसमें वो उन्होंने डेनमार्क की डेनिश पार्टी से हासिल
2: की।
4: तो अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि डेनिश पीपल्स पार्टी का फैलाया हुआ जाहिर जर्मनी तक कैसे पहुंचा और जर्मनी में कैसे इस्तेमाल हुआ है, और अपनी इस कामयाबी पर वो न सिर्फ बल्ले खुद बल्ले बजा रहे हैं बल्कि सदर ट्रंप जो है वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और सदर ट्रंप की मुनाफ़त या दोहरेपन का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जहाँ वो अपने मुल्क में इश्तराकी ख्याल रखने वाले और तरक्की पसंद ख्याल रखने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ वो इस तरह की सख्त तरीन इश्तराकी नज़रियात रखने वाली पार्टी जो है जो रूस की हमायती है, ये यूक्रेन में जंग को यूरोप की जंग नहीं चलती थी बल्कि समझती है कि इसमें जर्मनी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहिए, उसकी हम बात कर रहे हैं।
2: अच्छा आपने कहा कि इसके खिलाफ पूरे जर्मनी में काफ़ी इज्तम हुए डिमॉन्स्ट्रेशन में। एक और खबर भी आई है कि ये पार्टी जो है जर्मन इंटेलिजेंस की नज़र में भी है कि ये जो है फंडिंग इसकी है काफ़ी नाजी टाइप लोगों से फंडिंग आती है।
4: बिल्कुल आपने बजा कहा और इसलिए इसको तो मामूली नहीं समझा जा रहा। और जर्मन दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं बेशक वो दाएं बाजू की हैं या बाएं बाजू की, वो दोनों बड़ी तशवीश में हैं कि इस पार्टी को कैसे इसकी जगह पर रखा जाए और इसके लिए जो हमायत हासिल हो रही है उसकी असल वजूहत को जानने के लिए उनका तजारत किया जाए।
2: अच्छा, मेरे पास कुछ इसराइल के बारे में कुछ खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अक्टूबर में अगले महीने इसराइल में इलेक्शन होगा और कुछ पता नहीं कौन कामयाब हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि चॉइस जो है वो इस बिटवीन प्लेग एंड कॉलरा जो भी आए वो, लेकिन अब एक जो खबर है जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को 7 अक्टूबर पे जो हमास ने हमला किया था उसके बारे में कतर ने उसको बता दिया था कि होने वाला है, लेकिन उसने अपनी फौज को नहीं बताया और ये हमला होने दिया जिससे ये बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो क्या हो रहा है, अब अपोजिशन कह रही है कि ये मिला हुआ था हमास के साथ और वो कहता है कि ये प्रोपोगंडा है, लेकिन इलेक्शन में क्या आप समझते हैं कि नेतन्याहू इस दफ़ा कामयाब नहीं होगा 14 साल की हुकूमत के बाद?
4: ये बहुत गंभीर सूरत हाल है इस वक्त इसराइल की और नेतन्याहू का बतौर वज़ीर-ए-आज़म दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेना ये भी एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि कतर ने जो कुछ कहा है वो कितनी देर के बाद क्यों कहा है।
2: अच्छा।
4: हमला होते ही उस पर जो कुछ हुआ उसकी सूरत हाल को साफ करने के लिए कतर को ईमानदारी से कह देना चाहिए कि उन्होंने यानी खुद कतर ने इसराइल के जिम्मेदारों को बताया था कि हमला होने वाला है
2: जी।
4: और हमला ये इतला मिलने के बाद भी उन्होंने न सिर्फ इसके खिलाफ कोई इकदाम न लिए बल्कि इस हमले को होने दिया। और ये बात जो है ये इसराइल के नेतन्याहू के गले का फंदा बन रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइली जो हैं वो अपने मफाद को पहले रखते हैं और ख़ासतौर पर नेतन्याहू जो हैं वो इन चीज़ों में बड़ी महारत रखते हैं कि इस तरह के शोर शराबे से वो किस तरह बच जाए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इस वक्त इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है रियायत के मगरबी किनारे पर जो कुछ नई पश्तियाँ बनाई जा रही हैं और नए आबाद का दस्त दर्द जिस तरह मुकामी फलस्तीनियों को जो वहाँ सदियों से रहते चले आ रहे हैं उनके मकानों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उनके स्कूलों को उड़ा रहे हैं, उनकी मस्जिद जो हैं वो तो ख़त्म कर रहे हैं, यादगारी जो मज़ार बनाए गए हैं कतले लगाए गए हैं उनको तबाह कर रहे हैं। उस पर नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो कुछ कोई भी इकदाम नहीं दे रही और इसराइली फौजी जो हैं वो वहाँ पर महज तमाशाई खड़े उल्टा फलस्तीनियों को पकड़ रहे हैं।
2: अच्छा, इसमें एक रिएक्शन आया जी, इंटरनेशनल रिएक्शन आया कि
4: जी 12 मुल्कों ने
2: यूनियन
4: के कुछ मुल्कों समेत 12 मुल्कों ने और खुद डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल कदरे सख्त जुबान में इंतबाह किया है उन यहूदी बस्तियों के बसाने के खिलाफ जो दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में जिसमें सबक जो ईस्ट यरूशलम है मशरकी यरूशलम का हिस्सा उसमें तो बहुत ज़्यादा और ये सब कुछ जो है ये आलमी कानून के खिलाफ हो रहा है जी। और तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म हमारी जो हैं मेटर फ्रेडिक्सन इन्होंने भी उन मुल्कों के साथ मिलकर इसराइल से एहतजाज किया है। लेकिन कौन नहीं जानता कि इसराइल के खिलाफ इस तरह के एहतजाजात जो हैं वो कोई मानी नहीं रखते। अब इन्होंने ये पाबंदियाँ अब इन्होंने इसराइल के खिलाफ के मुल्कों ने ये पाबंदियाँ भी लगाई हैं कि दरिया उर्दन के मौजूद भी किनारे पर वेस्ट ब्रेड पर पैदा होने वाली चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं की जाएंगी।
2: ये जो 11-12 ममालिक हैं इसमें सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूके ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसराइली ऑक्यूपेशन जो है फलस्तीन की वो गैर कानूनी है और उनके
4: सबसे ज़्यादा जो सख्त वीर रद्दमल सामने आया है बरतानिया से आया है। आपने बिल्कुल मुझे कहा और इसराइल ने यही किया है कि उन्होंने मशरिक़ यरूशलम में برطانیہ کا جو کنسل جنرل تھا اس کو بند کر دیا اور اس کے عملے کو کہا کہ وہ اپنے گھر جائیں. اس پر بڑی دیر ہو رہی ہے, لیکن سب مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ ان آبادکاروں کو جو ہر طرح سے مسلح ہیں اور غیر مسلح فلسطینیوں کو وہ مار کے پیٹتے ہیں اور گولیاں بھی چلاتے ہیں, کئی جو ہیں وہ مر بھی گئے ہیں, تو ان کو کیسے روکا جائے؟
2: جی برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ خود بھی جیوش ہیں, اور انہوں نے میں نے ان دیکھا بی بی سی پہ اور دوسری میڈیا پہ بہت سخت غصے میں انہوں نے بیان دیے, لیکن نتنیاہو کہتے ہیں اس شخص کو کچھ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہر چیز
4: اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے متعلق یا اسرائیلیوں کے متعلق کوئی بھی بات کی جائے تو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیمیٹیز کی بات ہو رہی ہے.
2: بالکل,
4: اور اس بات کو ختم ہونا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں اینٹی سیمیٹیزم کو لے آنا یہ کہاں کا احساس ہے؟ جب کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے, آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں, وہاں پر 80-80 سال پرانے زیتون کے درخت جو ہیں ان کو آپ گرا رہے ہیں, جڑوں سے اخاڑ کر آپ تباہ کر رہے ہیں, جو کہ ان کا ایک دریائے معاش ہے.
2: اچھا, آپ نے سیٹلرز کی بات کی جن کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک خبر آئی ہے کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے اس وہ تقریباً 1/5-20% جو ہے اب وہ سیٹلر کے قبضے میں ہے, حالانکہ یہ جو ہے وہ فلسطینی علاقہ ہے اور اس میں وہ گھر بنا رہے ہیں, کالونیز بنا رہے ہیں, اور ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ IDF, اسرائیل کی سرکاری فوج, اور وہ ان کو بچاتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. اور ایک امریکن ڈیموکریٹک کانگریس مین ہے, روہت کھنہ نام ان کے, انڈین بیک گراؤنڈ کے, وہ وہاں گئے, ان کو بھی بڑا تنگ کیا سیٹلر نے, بلکہ ان کو پتھر برسائے, تو انہوں نے آ کے امریکہ میں بڑے سخت بیان دیے اور امریکن حکومت سے کہا کہ اسرائیل کی مدد بند کر دو. تو میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے اسرائیل پہ, اور اسرائیل بالکل اکیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو کیا ان کے پاس کون سی ہے جگر سنگھی ہے جو وہ بالکل کسی کی بات نہیں سنتے؟
4: ان کے پاس کوئی جگر سنگھی نہیں, ان کے پاس ایک عملی طاقت ہے جو ان کی سرپرستی کرتی ہے, اور وہ ہے امریکہ. امریکہ چاہے تو یہ ساری چیزیں ایک دن میں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امریکی مفادات جو ہیں, اگر امریکہ اسرائیل پر زیادہ زور لگائے گا تو وہ صدر ٹرمپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر موجود اسرائیلی لابی جو ہے وہ ان پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں, باقاعدہ فوج کے لوگ جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کی, ان نو آبادکاروں کی باقاعدہ پشتنا ہی کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ان علاقوں میں جہاں یہ بستیاں بچا رہے ہیں, جہاں یہ اپنے نئے مکانات تعمیر کر رہے ہیں اور اس موجود فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے, وہاں سرکاری طور پر بجلی جو ہے وہ کون فراہم کر رہا ہے؟ جی, فلسطینیوں کے لیے تو پانی تک جو ہے وہ اس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے, تو ان کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے, ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ جو آباد کا دہشت گرد ہیں, ان کو یہ سہولت کیوں اور کون مہیا کر رہا ہے؟
2: ابھی ایک نئی خبر آئی ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں سیٹلر, وہ فلسطینی کنویں میں یا جہاں سے وہ دریا وغیرہ, اس میں وہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کے لیے
4: وہ ہر فربہ استعمال کر رہے ہیں.
2: بالکل بالکل.
4: 1952 میں ایک خبر, ایک رپورٹ آئی تھی کہ کس طرح ان دہشت گرد یہودیوں نے فلسطینیوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اوپر فضا سے, ہوا سے بارود پھینک کر آگ لگا
2: دی,
4: اور اس رپورٹ کے مرتب کرنے والے جو تھے وہ ڈینش بریگیڈیئر تھے, اور یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے اس وفد نے, چیئر وفد نے اپنی وہ رپورٹ تیار کی. وہ رپورٹ کی گرا دی گئی جس کارخانے میں, جس چھاپا خانہ میں وہ چھپی, وہ چھاپا خانہ جو ہے اس کو بم سے اڑا دیا گیا. اور آج اس رپورٹ کی, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, صرف 2 کاپیاں کانگریس لائبریری میں موجود ہیں, باقی سب تباہ کر دیں گے. جہاں ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں وہاں افسوس یہ ہوتا ہے کہ خود یورپ والے یہ منافق کیوں نہیں چھوڑتے اور اسرائیل کو اچھی طرح سے اسی طرح سزا کیوں نہیں دیتے جس طرح یہ روس کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ اس نے یوکرین کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. وہ یوکرین کا قبضہ تو یاد آ رہا ہے, یہ کیوں نہیں یاد آ رہا کہ وہاں پر نسل در نسل صدیوں سے رہنے والے فلسطینیوں کو یوں بے گھر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک کونے میں دھکیل دیا جا رہا ہے.
2: اچھا, اس سیکٹر کے ایشو میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کافی اسرائیلی یہودی لوگ جو ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, پیس ایکٹیوسٹ ہیں اور جو مذہبی بھی ہیں, وہ کئی دفعہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں فلسطینین اور ان سیکولر ٹیررسٹ کے درمیان اور فلسطینین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے ہگ دا اولیو ٹریز, ایکٹیوسٹ جا کے جیوش ایکٹیوسٹ وہ درختوں سے چمٹ جاتے ہیں تاکہ اس کو کاٹا نہ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم فلسطینین پہ ظلم کریں, اور یہ ہم سب جو ہیں ابراہیم کے بچے ہیں, بیٹے ہیں یا ان کی اولاد میں سے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن سے رہیں. لیکن وہ اتنے ان کی بات زیادہ باہر آتی نہیں ہے, وہ صرف وہاں پہ لوکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں.
4: یہ آپ نے بالکل بجا کہا کہ وہ کچھ حد تک فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اس طرح کا سلوک کا سامنا نہیں کرنا کرنا چاہیے جس طرح کہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کتنا بھی فلسطینیوں کے حق میں ہو, وہ سب سے پہلے اسرائیل کا حمایتی ہے. اور آپ نے مذہب کی بات کی کہ وہ مذہب کے طور پر نہیں ہے, جن کا ایمان ہی یہ ہو کہ ابھی اسرائیل مکمل نہیں ہوا, کیونکہ جس طرح سے خدا نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس میں تو شرائع سنت کا علاقہ جو ہے, سعودی عرب کا علاقہ جو ہے, وہ بھی اس میں آتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ نتنیاہو ایسے نقشے جو میں چن دکھا
2: چکا
4: جن میں گریٹر اسرائیل کا تصور پیش کیا گیا ہے. تو جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں وہاں وہ لوگ جو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں وہ فلسطینیوں کے جان و مال کا تحفظ ضرور چاہتے ہیں, کوئی شک نہیں, اس لیے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن وہ اسرائیل کی وسعت جو زمینی وسعت ہے, جغرافیائی وسعت ہے, اس کے خلاف بالکل نہیں.
2: جی بالکل, ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بات کی کہ امریکہ میں جو ہے جیوش لابی بلکہ اسرائیلی لابی بہت اسٹرانگ ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کانسپریسی ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن اب ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو زائنس انفلوئنس جو سوشل میڈیا پہ ہے, تو جتنی بڑی بڑی سوشل میڈیا, انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گئی, ایکس, جو بھی اور بڑی بڑی کمپنی ہیں جس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ساری جو ہیں وہ ابھی اسرائیلی لابی کے جو لوگ جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ خریدنا شروع کر دیا سارا میڈیا انہوں نے. اور وہاں پہ وہ اگر کوئی پرو فلسطینین یا اینٹی اسرائیل اگر کوئی آپ پوسٹ وغیرہ لگائیں گے تو فوراً آپ کو نوٹس آ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. تو یہ انفلوئنس جو ہے یہ ایک ڈکلیئر پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے ان کی اسرائیل کی اور سلابی کی.
4: جی بالکل, آپ نے
2: بجا
4: کہا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیوش انفلوئنس جو ہے وہ پورے یورپ کے پرنٹ میڈیا پر اور دوسری طرح کے جو الیکٹرانک میڈیا پر ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہاں دیکھتے ہیں ڈنمارک میں, آپ تو بہت بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ کنڈک جو تھے روزنامہ پولیٹیکل کے ایڈیٹر, یاد ہے آپ کو؟
2: جی جی بالکل یاد ہے.
4: ان کا بیٹا جو ہے وہ اسرائیل میں اربوں کے خلاف جنگ میں مارا گیا, جو بھی یاد ہوگا آپ کو. پھر انہوں نے ڈینش ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر خود جو بیان دیا ہوا ہے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے پردے میں وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے رہے.
2: ابھی خبر آئی ہے کہ راؤرکیلا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی مجھے بڑا تنگ کیا جاتا ہے, پتہ چلا کہ وہ اسرائیل کی فوج میں فلسطینین کو مارتی گئی ہے اور اب واپس آ کے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. تو یہ بات عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص سیریا جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے تو اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر وہی شخص جو ہے اسرائیل جا کے فلسطینیوں کو مارتا ہے تو وہ بلکہ خود آ کے کہتا ہے کہ میں جو ہے میں نے یہ کیا, تو وہ اس پہ کوئی جو ہے ایکشن نہیں لیا جاتا.
4: जी बिल्कुल आपने भैया कहा, और आप खुद अंदाजा लगाइए कि कई डैनिश जो हैं वो इसराइल के फौज में रिजर्व सिपाही भर्ती हैं।
2: बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और खुल के कहते हैं वो तो बिल्कुल
4: खुल कर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि गजा के सबसे मौजूद मोतबर मजबूत घराने के जो जो हैं एक साहब, वो इसराइल के वजीरे हाउसिंग वजीर रहे हैं,
2: वो जो बैंक मिल्सा के जो जो
4: के
2: जो बच्चे जो लड़का है ना उनका वो भी चीफ रबाई है नागो में
4: जी, जो यहाँ का रबाई है
2: वो तो उसका पोता है। जी जी बिल्कुल,
4: जो उनका उनका छोटा भाई जो था वो हाउसिंग मिनिस्टर था, और
2: माइकल हाँ बिल्कुल
4: जी, और उन्होंने जिस तरह नई बस्तियाँ बसाने में जो किरदार अदा किया, फलस्तीनियों को बेघर करने में जो किया, वो डेनमार्क के लिए बात से शर्म होना चाहिए।
2: मैं आपको बात बताऊं, आप ज़रूर हंसेंगे भी और गुस्सा भी आपको आएगा। मैंने जब इसराइल का विज़िट किया तो उधर मुझे माइकल मिल्सा से भी मुलाकात हुई, वो उस वक्त वजीर थे लेबर पार्टी के, तो मैंने उनसे ये सवाल किया जो भी आप कर रहे हैं, तो मुझे कहता है तुम्हें नहीं पता अभी तुम देखो इसराइल में हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तो वही तुम्हें बता रहा हूँ जो हमें नज़र आता है, तो वो हमेशा जो है अपने आप को डिफेंसिव पोजिशन में चले जाते हैं। और अभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा जी जी हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो हैं लास्ट यूके, उन्होंने कहा कि यूरोपियन ममालिक जो इसराइल की चीज़ें जो वेस्ट बैंक में पैदा होती हैं उस पर जो सेंक्शन लगा रहे हैं, हम उस पर गौर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ईयू का कमीशन हमें कहे तो हम करेंगे, अपने तौर पर हम कुछ नहीं करना चाहते। अंदाजा लगाएं किस तरह के अजीब से वो लॉजिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
4: ये जो दो रुपये पॉलिसी जो है, ये इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये पार्टियाँ डेनमार्क की सियासी पार्टियाँ जो हैं ये असल में क्या मौक़ रखती हैं, और हमें किस तरह इनकी नशे किसी की जिसकी भी हम करना चाहते हैं बजट करनी चाहिए तो उसके वोटों में इजाफा करना चाहिए।
2: अच्छा सदर ट्रंप साहब ने अब आपको याद होगा कि वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, बड़ी बातें करते रहे हैं, अब उन्होंने डेड लाइन दी है, उन्होंने कहा है कि जी ग्रीनलैंड तो मैंने लेना ही लेना है और मैं 2029 से पहले जो है ना हमारा कंट्रोल हो जाएगा इसके ऊपर, तो 2029 में तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, पता नहीं है वो क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं। ग्रीनलैंड को वो जो है ना वो बड़ी उनकी नज़र है उसके ऊपर,
4: इसके अलावा उन्होंने कुछ और मुल्कों को भी अपने झंडे में शामिल करने की कोशिश की है, बकाया एक नक्शा भी शायद किया है
2: जी जी जी,
4: क्योंकि वो कब सऊदी अरब को अपना हिस्सा बनाएंगे। ये अहमकाना पन जो है जनाब ट्रंप साहब का ये बहुत गंभीर है, और ये छोटी सी बात करके ऐसा भूंचाल पैदा कर देते हैं कि सोचने वाले देखते हैं कि दुनिया किधर जा रही है, और ये अहमकाना इकदाम जो हैं इनका असल सबब क्या है। आपने बिल्कुल कम दिया कहा सन 2029 तक क्या होगा, क्या उसको कतर के जो सदर बनेंगे, लेकिन ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका के मौजूदा आइन के तहत कोई सदर जो है वो दो मरतबा सदर रहने के बाद तीसरी मरतबा अपने आप को बतौर सदर उम्मीदवार पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप की ख्वाहिशात इतनी तेज हैं और इतनी सख्त हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की रुकावट जो मौजूद है तो उसको दूर करने के लिए वो कांग्रेस से मंजूरी हासिल करें,
2: और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। जी जी,
4: सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहते हैं, इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के 9 जज में से कितने जज जिनके अपने
2: उनके हाथ में बिल्कुल,
4: और फिर दीवाने नुमाइंदगान में और दूसरी जगहों पर कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये खौफ रखते हैं कि अगर ट्रंप के खिलाफ की चीज बोल दी जाएगी तो वो उनके इलाके में उनकी मकबूलियत खो देंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे। और अभी आपने ये एक और सोचा दिखा है कि ट्रंप साहब ने ऐलान किया है कि अगर आइंदा इंतखाबात में वो दोनों ऐवानों में जीत जाते हैं तो वो हर बालग अमरीकी के लिए $5,000 जो है वो देंगे,
2: तो वो रिश्वत दे रहे हैं वो
4: इसे आप रिश्वत अगर आप रिश्वत कहते हैं तो ये सदर ट्रंप के मुस्तैदगा से गलत है।
2: हाँ ये बहुत, वो जैसे मोदी साहब ने किया था बिहार में इलेक्शन से पहले, उन्होंने हर वोटर के 10,000 रुपये डाले तो वो वहाँ भी जीत गए।
4: बिल्कुल अच्छा ये दिए जाएंगे या 500 भी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये लोगों को लालच देकर इस तरह की गर्मियाँ हासिल करना और अपने स्वैच्छिक मकसद को पूरा करना ये इंतहाई गैर जमहूरी और एक जुर्माना करना।
2: लेकिन वो तो बिजनेस मैन है, वो तो कहता है मैं डील करता हूँ, मैं तो हर चीज़ को खरीद सकता हूँ।
4: बिल्कुल, अभी वो यही डील करने के लिए तो आयरलैंड आए हुए थे दो दिन
2: उसके जान में। अच्छा, आखिरी इंटरनेशनल खबर जो है वो ट्रंप साहब की है। अब ईरान के साथ जंग में अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है और पेंटागन जो है वो उसको छुपा रही है कि सैकड़ों अमेरिकन मिलिट्री के जो पर्सनल हैं वो उनकी डेथ हुई है ईरान वॉर में, बड़ा नुकसान हुआ है, कई उनके जहाज़ उड़े थे। लेकिन वो मीडिया के साथ मिलके वो मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में उसकी खबर बिल्कुल नहीं आती, सोशल मीडिया पे आती है। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है पार्स, वो उन्होंने सबूत पेश किए हैं, लेकिन ये अपने लोगों को नहीं बता रहे कि हमारा नुकसान वहाँ पर कितना हो रहा है।
4: बिल्कुल आपने बुला कहा, इसके लिए आप कुछ आवाज़ें खुद अमेरिका में उठ रही हैं।
2: जी जी,
4: और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले से बहुत देर हो जाए और वियतनाम की तरह आखिर में आप कुछ नहीं करने की तरफ आ जाएं कि कितना नुकसान हुआ है, आप अभी से बताएं कि कितना नुकसान हुआ है।
2: जी जी,
4: क्योंकि वहाँ पर अमरीका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी आपने बिल्कुल बुला कहा, कोई खबर में नहीं आ रही, मीडिया में ज़्यादा जिक्र नहीं हो रहा। और ईरान जो है वो अपने तौर पर दस्तावेजी सबूतों के साथ ये पेश कर रहा है कि अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो चुके हैं। लेकिन चूंकि उसके ज़राए बड़े मौजूद हैं और उसकी बातों की तस्वीर नहीं की जाती और उसे मगरबी मीडिया जो है खासतौर पर टेलीविजन वगैरह वो कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल इनफैक्ट यही है जिसका आपने जिक्र किया कि अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उस पर पेंटागन यानी अमेरिकी वजारती दफा जो है वो सख्त परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि मिशर अपने जो हैं सोलर ट्रंप वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ रहे या ना रहे, अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ अपनी ये जो जंग है ये जारी रखे।
2: तो अभी नसर साहब, अब हम आते हैं डेनिश खबरों की तरफ। तो एक नया सर्वे आया है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसको पीज़ा कहते हैं, पीज़ा, वो जो है उन्होंने काफ़ी ममालिक में सर्वे किया है कि ये जो इंटरनेट वगैरह है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बच्चों का, नौजवान बच्चों का इंटरनेट इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, और ख़ासतौर पर जो 15 साल के से कम जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर उसका क्या असर हुआ है। तो अब ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट जो हैं ना सिर्फ डेनमार्क बाकी और दूसरे ममालिक में भी उनकी सोचने की सलाहियत बहुत कम होती जा रही है, वो ख़ासतौर पर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस किस्म के सब्जेक्ट्स में वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया और इंटरनेट और गूगल वगैरह ये लोगों को बहुत मालूम फराहम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अहमक हो रहे हैं, स्टूडेंट जो है, तो ये एक अच्छी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत इस पर जो है वो बात नहीं करती ज़्यादा खुल के।
4: नहीं, देखिए देखिए, जिन्होंने हुकूमती चारों मुशाकी पार्टियों जो हैं उन्होंने अपना अपना मौका भी इस मौके पर पेश किया है और एक मुश्तरक लाह अमल इख्तियार करने का अंदिया भी दिया है।
2: अच्छा।
4: और ये तस्लीम किया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक डैनिश तलबा जो हैं उनमें 10 ही किताबों की अबारत पढ़ना जो है तो सनसन के साथ वो कोई किताब नहीं पढ़ सकते, यानी वो अपनी जुबान भी नहीं पढ़ सकते। इसका ये क्योंकि एक जुमला पढ़ते हुए वो 3-4 मरतबा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और उस जुमले की अगर इनको मजाक करने के लिए कहा जाए तो ये दाएं बाएं देखने लगते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि पढ़ा क्या है। इस सूरत हाल में इस रिपोर्ट को तो बड़ी शिद्दत से लिया जा रहा है और असातिज़ा की तंजीम जो है उस पर भी बोल जाना जा रहा है, लेकिन असातिज़ा कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा ही फर्ज नहीं कि हम बच्चों को कुछ कहें, वालदैन को चाहिए कि वो उन ज़राए को महदूद करें जिन पर बच्चे अपना खाम खा का ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं, और वो वही है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आज बाज़ार में आई हुई, मसलन आईफोन है जी, AI है जी, और इसका भी इस्तेमाल है, और हुकूमत का खुद भी मौक़ है مشترکہ موقف چاروں پارٹیوں کا کہ اس چیز کو کم سے کم کرنے کے لیے جیسے بعض اسکولوں میں بعض جمنازیم میں بعض جگہوں پر ٹیلی فون کا استعمال جو ہے وہ دوران اسکول منع ہے.
2: وزیر اعظم نے بھی دو دن پہلے پریس کانفرنس کی, اس میں کہا کہ پرائمری اسکولوں میں جو ہے موبائل ٹیلی فون اور ٹیبلٹ جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی بین کر دیا جائے گا.
4: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اسی طرح حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کے سوشل میڈیا وغیرہ کو بند کیا جائے اور اس کے لیے تجویز ہے. لیکن کل ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی ہے, خوبصورت کیا ایک امکانہ بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم جہاں طلبا کے لیے اس طرح کی چیزوں پر ممانعت لگانے کی بات کر رہی تھیں, وہاں کل انہوں نے یہ کہا کہ میں تو خود سوشل میڈیا استعمال کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی. تو اب یہ ان سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دوسروں کو بند کر رہی ہیں تو اپنے لیے یہ سہولت اس طرح اعلانیہ اختیار کرنے کی بات کی تو کیا.
2: جی جی جی جی. اچھا لہن صاحب, ایک پاکستانی کمیونٹی کی خبر ہے اور وہ ڈینش تو خبر تو ہے ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی سکندر صدیق صاحب جو ہیں ان کا جو کیس چل رہا تھا ان کے الیکشن کا, اور وہ ان کا رہائش کہاں تھی اور انہوں نے کوپن ہیگن میں الیکشن لڑا, اب اس کا آخری فیصلہ آ گیا ہے. اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کا جو بجلی کے بل دیکھے گئے اور ان کا جو بینک کا وہ کاؤنٹر دیکھا گیا اس میں کہاں پہ یہ جو خرچ کرتے رہتے ہیں, تو اس سے پتہ چلا ہے کہ سکندر صدیق صاحب جو ہیں وہ کوپن ہیگن جو ہے وہ صرف اسی لیے موو ہوئے تھے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں, لیکن وہ زندگی اپنی جو ہے وہ ہیلے میں گزار رہے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں. تو اب وہ پتہ چلا ہے کہ اس رہائش کے کیس کی وجہ سے سکندر صدیق صاحب جو ہیں ان کو وہ کوپن ہیگن ٹاؤن ہال میں نہیں بیٹھ سکتے, ان کی جگہ جو ہے ہاشم آغا ندیم کے بیٹے جو ہیں وہ جو ہے ان کے سپلینٹ ہوں گے. تو اب یہ اس پہ جو ہے بالکل پنکتم ہو گیا ہے. اور جب صدیق صاحب سکندر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ابھی جو کورٹ میں جائیں گے, تو انہوں نے کہا میں اس کورٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے. یہ تو یہ ایک دکھ والی بات ہے کہ ایک بہت ٹھیک ٹھاک بولنے والا شخص جو ہے وہ قانون میں نہیں ہوگا.
4: یہ دیکھیے, آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا کہ دکھ والی بات ہے.
2: جی جی,
4: دکھ وہاں ہوتا ہے جہاں انصاف کے خلاف آپ کی حقیقت کے خلاف کی چیز جو ہے وہ رونما ہو.
2: جی,
4: پھر آپ دکھ کا اظہار کیجیے.
2: جی,
4: ہمیں اس بات کا احساس ضرور ہے

0: जी जी बिल्कुल,
1: क्योंकि अक्सर वो अपने बयान में ये कहते हैं कि कोपेनहेगन पार्लियामेंट,
0: हाँ ये तो ये भी कह सकते हैं,
1: और उन सवाल को करने वाले पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी यही कहते हैं कि कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में आपने ये कहा।
0: वो नहीं पता ना उनको, समझते हैं कि वो पार्लियामेंट कहने से वो ज्यादा
1: सिटी काउंसिल है और इसे सिटी काउंसिल के नाम से पढ़ा जाना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: अंग्रेजी में
0: जी जी,
1: वरना तो ब्यू बोल
0: रहा है, कोपेनहेगन बल्दिया जी है, बिल्कुल
1: कोपेनहेगन बल्दिया की ये काउंसिल है।
0: जी जी,
1: लेकिन सदीक के इस तरह के जवाब पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वाकई ही बड़ी, क्या आप उसे कहेंगे, अपने आप को निदामत महसूस कर रही है कि उनकी एक आवाज़ जो थी वो बंद की जा रही है। और आपने ये बिल्कुल मजा कहा कि सदीक से जब लोगों ने ये पूछा तो कि क्या वो इस मामले को आगे हाईकोर्ट में लेके जाएंगे या कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं करेंगे। और एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि वहाँ चूँकि उनकी आइडिया को भी बुलाया जाएगा, कबर किया जाएगा, तो वो ये सारा तमाशा नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक और बड़ी अजीब चीज़ रूनमा हुई है कि एक और डैनिश सियासी पार्टी जो है मेरे ख्याल में मॉडरेट हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि आप वो सदीक के खिलाफ पुलिस के हाथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि और उन सदीक ने अपनी रिहाइश को गलत मालूमात मुहैया करके अपने आप को कोपेनहेगन में मौजूद करार दिया, ये फैसला गलत था, और इससे तो उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी तो आगाह होंगे। लेकिन ये हम तो नहीं कह सकते क्योंकि सदीक ने जो किया उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक दुरुस्त किया। अब उनका ये दुरुस्त करना आपने लिए ये बल्दिया के नज़दीक अगर गलत है तो फिर उसका फैसला भी आ गया है। दूसरी तरफ वही पार्टी जो है अब वो ये कह रही है कि जब वो मुकदमा करेंगे तो वो सिर्फ ये मुकदमा नहीं करेंगे कि इन्होंने अपनी जाए रिहाइश का गलत बताया, बल्कि वो उसके साथ ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन के दौरान इस पार्टी को सरकारी इमदाद दी गई थी जैसा कि तमाम पार्टियों को मिलती है और वो वापस की जाए, और अगर ये बात शुरू होती है तो इस मामले का अभी क्वांटम यानी अभी इख्तितामिया नहीं हुआ, अभी इसका नया आगाज होने वाला है।
0: तो इसका मकसद ये है कि उनको आराम से नहीं बहने दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो दोबारा भी होगा, अभी दो साल के बाद वो फिर कामयाब, वो जो हो सकता है कामयाब हो जाए तो फिर ये तो सिलसिला चलता रहे।
1: बिल्कुल, ये उनके लिए खुला मौका और एक खुला चैलेंज भी है। देखिए उन्होंने 3000 के करीब मेरे ख्याल में
0: 3600 वोट मिले थे उनको,
1: जाती वोट जो है हासिल किए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दानिश बुनियादी सियासत में बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपने वो इन राय दे हिंदुस्तान को इस फैसले आने के बाद अपने साथ रख सकेंगे, क्या उनके राय दे हिंदुस्तान जो है वो अपनी राय को बदलने के लिए या उस पर कायम रहने के लिए सोचेंगे, और ये उनका हक है कि वो अगले इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से होंगे या फिर वो एक नई तंजीम या नई पार्टी खड़ी करेंगे, या ये आने वाला वक्त बताएगा।
0: अच्छा, आखिर में एक और खबर है जो कि काफ़ी तश्वीशनाक है, और वो जिस तरीके से पेश किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है कैलकुलेशन किया है कि 2010 में 2100 में डेनमार्क किस तरह होगा, कैसे जो है नज़र आएगा। अब ये कहते हैं उन्होंने जो ये शुमार तारों के शुमार पेश किए उसकी रूह से डेनिश लोग, वाइट क्रिश्चियन डेनिश लोग जो डेनिश बैकग्राउंड है जिनकी, वो सिर्फ 68% होंगे। इसका मकसद ये है कि तकरीबन 32% लोग जो हैं उनका ताल्लुक डेनमार्क से नहीं होगा, और वो तीसरी दुनिया से जो लोग आए होंगे, और ये एक उनकी नज़र में जो है ये बहुत तश्वीशनाक खबर है। अब जिस चीज़ का मुझे जो अजीब सी लग रही है वो ये है कि आप इस खबर से क्या साबित करना चाहते हैं, और अगर आप यूरोपियन ममालिक पे नज़र डालें, फ्रांस, इंग्लैंड, जहाँ पे गैर ममालिक से लोग आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए उनके रहते हुए फ्रांस और इंग्लैंड में, तो और वहाँ भी अभी वो 10-12% पूरी टोटल पॉपुलेशन ही हुई, और अक्सरियत उनकी वो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन डेनिश

0: जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो ये खबरें ये ऐसी खबर किस तरीके इस तरीके से क्यों पेश की जा रही है?
1: देखिए, आपने आबादी में डैनिश खर्च डैनिश नस्ल आबादी में राजनीतियों की, यानी जैसा आपने कहा किसी दुनिया के ममालिक जो है गैर डैनिश जो हैं उनकी तादाद पर नज़ार रखना ये एक अच्छी बात है, तो ये कोई ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं। लेकिन और यही चीज़ जो है ये साबित करती है कि डेनमार्क जो है वो एक कसीदुल सकाफ़ती कसीदुल कुमैयती मुल्क है, और इस चीज़ को डेनमार्क को बाश फ़ख्र समझना चाहिए अपने लिए कि यहाँ कितनी कौमें जो है वो आबाद है, और इसे ये खतरा बनाकर सामने नहीं जाना चाहिए कि फलां साल के बाद हम इतने कम हो जाएंगे कि हम अकलियत में आ जाएंगे। ये चीज़ जो है ये तसर पैदा करना दरअसल पिछले यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम जो हैं और ख़ासतौर पर मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ दैनिश लोगों को मुतहरक करने या सोच विचार करने का मौका मुहैया करने से मुतराज होता
0: है,
1: और ये गर्व बात ये अख्तियार जो है ये जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इस राजनीति पर जम पड़े।
0: अच्छा, इसमें नफे सर एक और चीज़ भी जो काबिल गौर है वो ये है कि जो कैलकुलेशन होना चाहिए उसकी बेस क्या बनाई है कि 2019 से लेकर 2025 छः साल के अरसे में कितने लोग यहाँ पे आए, माइग्रेशन कितनी हुई, असालम सीकर कितने आए, तो अब वो आने वाले 100 साल में तो वो सिचुएशन नहीं रहेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तादाद से गैर मुल्की लोग आते रहें यहाँ पे, तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए तो सही तादाद इस्तेमाल नहीं है।
1: आपने बिल्कुल बजा कहा, इस रिपोर्ट में जो चीज़ मुझे कम महसूस हो रही है और जिसका इजहार बड़ा कम किया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें जो हैं ये तो पिछले 20-25 साल से हर साल कमोवेश जारी होती है आबादी का तनासब देखने के लिए, लेकिन इसमें ये मालूम नहीं हो रहा कि कितने लोग यहाँ से विजिट कर गए
0: हैं।
1: और अगर उस फिगर को सामने रखा जाए तो यहाँ आने वाले लोगों की जो शरह तनासब है वो कोई ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन क्योंकि वो फिगर जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, लिहाजा ये कहना कि ये रिपोर्ट जो है ये कुछ उन खतरात की आगाही करती है, उन नादीदा खतरात की आगाही करती है जो गैर मुल्कियों की आबादी बढ़ जाने से खुदा नखास्ता डेनमार्क को दरपेश आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपका खदशा बिल्कुल बजा है और इस पर हमें भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की रिपोर्टें मुआशरे में कसीर कौमियती और कसीर सकाफ़ती जो जो हम आंगी है उसको पैदा करने की बजाय नुकसान के
0: साथ। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया और आज जो हमने बहुत से टॉपिक जो है कवर किए। अगले हफ्ते मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं स्ट्रासबर्ग में हूँ वहाँ पे एक मीटिंग में, तो उससे अगले हफ्ते जो है फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम होगा भाई, उम्मीद है हमारे सामने नाजरीन को जो हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय और अपने कमेंट्स जो है हमारे रिव्यू को बताते हैं, तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नए उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33-21-29-84, ईमेल रेडियो स्मैगलाइट हम वतन। देखो हमारी वेबसाइट है